0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने 3 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। हफ्ते के रोज़ मशरकी स्पेन में एक शख्स हलाक हो गया। ज़्यादा दर्ज हरारत और खुश्क मौसम ने यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में आग को हवा दी है। फ्रांसीसी वजीर आजम सेबेस्टियन लिकॉर्नू ने हफ्ते के रोज़ सोशल मीडिया पर लिखा कि इस वक्त मुल्क भर में तकरीबन 30 मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। हफ्ते के रोज़ फ्रांसीसी हुकाम ने मजीद 55,000 लोगों को इनखला का हुक्म दिया, जिससे मुल्क में नकल मकानी पर मजबूर अफराद की कुल तादाद कम से कम 2.5 लाख हो गई। फ्रांस के जनूब मगरबी इलाके जिरोंडे में जंगल की आग जजीरा नुमा केप फेरेट के इर्द गिर्द फैल रही है, जो बोर्डो के करीब एक तफरीही इलाका है। फ्रांस के वजीर दाखिला लॉरेंट नूनेज ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि 42,000 हेक्टर अराजी जल गई है। स्पेन में दारकूमत मेड्रिड के आसपास के इलाकों में हुकूमत की जानिब से जुमेरात को कौमी एमरजेंसी के ऐलान के बाद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मुसलसल कोशिशों के बावजूद आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि वस्ती स्पेन में तकरीबन 70,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मशरकी इलाके वेलेंसिया में हुकाम का कहना है कि मकामी जंगल में लगने वाली आग से एक शख्स हलाक हो गया। यूक्रेन में पैदा होने वाले एक सुमो पहलवान ने सैफरी की हतमी मुकाबले में गालिब रहने के बाद जुलाई के ग्रैंड टूर्नामेंट में अपने कैरियर की तीसरी टॉप डिवीजन चैंपियनशिप जीत ली है। सेकिवाके के तीसरे सबसे बड़े रैंक पर फाइज आओनी शिकी वस्ती जापान के नागोया में 15 रोजा टूर्नामेंट के आखिरी दिन 2 शिकस्तों के साथ सबसे आगे थे। साथ ही सेकिवाके अतामी फुजी और ओजिकी का दूसरा सबसे बड़ा दर्जा रखने वाले किरीशिमा 3-3 शिकस्तों के साथ उनके बाद थे। टूर्नामेंट के आखिरी दिन इतवार के रोज अतामी फुजी ने आओनी शिकी को उखाड़े से बाहर धकेल दिया, जबकि किरीशिमा ने फ्रंटल फोर्स आउट के साथ फतह हासिल की। इसका मतलब ये था कि तीनों पहलवानों ने 12 फतूहात और 3 शिकस्तों के साथ टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। बाद हजा उनके दरमियान हतमी मुकाबला हुआ, जिसमें लगातार 2 मुकाबले जीतने वाला पहलवान टूर्नामेंट का फातेह करार पाया। अतामी फुजी ने पहले मुकाबले में किरीशिमा को धकेल दिया, लेकिन आउनी शिकी ने दूसरे मुकाबले में अतामी फुजी को और तीसरे मुकाबले में किरीशिमा को रिंग से बाहर करके जनवरी के टूर्नामेंट के बाद अपना पहला एम्पायर कप जीत लिया। मगरबी जापान के ओइता प्रिफेक्चर के हिता शहर में मौसम गर्मा के रिवायती मेले में नफीस और रंगीन सजावटी अशिया से आरास्ता फ्लोट्स की परेड की गई। हिता कियोन फेस्टिवल का आगाज 300 साल से ज्यादा पहले बीमारी और आफात से बचाव के लिए हुआ था। ये यूनेस्को के गैर मरई सकाफती विरसे के तौर पर रजिस्टर्ड है। हफ्ते के रोज हापी कोट पहने हुए लोगों ने कबुकी और जोरूरी के रिवायती परफॉर्मिंग आर्ट्स के मनाजिर की अक्कासी करने वाली शख्सियात से मुजयन फ्लोट खींचे। मामेदा उआमाची इलाके के एक फ्लोट के पिछले हिस्से को तकरीबन 3×1.3 मीटर टेक्सटाइल से मुजयन किया गया था। इसमें कढ़ाई के जरिए बनाई गई सुनहरी कार्प मछली को तलुए आफ्ताब के वक्त आबशार की मुखालिफ सम चढ़ते हुए दिखाया गया था। कहा जाता है कि यह 1840 में बनाए गए अब मतरूक टेक्सटाइल की नकल है।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। अमरीका के एक खबरसा इदारे ने खबर दी है कि मशरक वस्ता में आला अमरीकी फौजी कमांडर ने आबनाए हुर्मस के गिर्द बमबारी की कार्रवाई रोकने की सिफारिश की है। अक्सियोस ने इतवार के रोज 2 जराए के हवाले से बताया कि एडमिरल ब्रेड कूपर ने पेंटागोन, जॉइंट चीफ्स और व्हाइट हाउस को सिफारिशात पेश की हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसने बहरे कैस्पियन में रूस और ईरान के दरमियान फौजी सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाजों पर हमले किए हैं। और फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग ने 3 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 27 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सकू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी समाचार केंद्र एक्सियोस के अनुसार पश्चिम एशिया में शीर्ष अमरीकी सैन्य कमांडर ने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास गोलाबारी रोकने की सलाह दी है। रविवार को एक्सियोस ने दो सूत्रों के हवाले से बताया कि एडमिरल ब्रैड कूपर ने पेंटागन, जॉइंट चीफ्स और व्हाइट हाउस को यह सलाह दी। लेख में कहा गया है कि अमरीकी केंद्रीय सैन्य कमान के कमांडर ने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में दो सप्ताह तक चले हमलों ने जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया है। इसमें यह भी कहा गया है, कूपर के अनुसार सभी निर्धारित लक्ष्यों पर बमबारी लगभग पूरी हो चुकी है। लेख में आगे कहा गया है, कूपर ने कहा कि अगला संभावित कदम उन 20% लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान फिर से शुरू करना होगा, जिन्हें अमरीकी सेना ने नामित किया था लेकिन उन पर हमला नहीं किया। लेकिन लेख के अनुसार कूपर ने इस बात पर जोर दिया कि यदि व्यापक हमले दोबारा शुरू करने का निर्णय नहीं लिया गया तो पिछले दो हफ्तों के बमबारी अभियान को जारी रखने का कोई मतलब नहीं होगा। एक्सियोस ने कहा कि कूपर और अन्य सलाहकारों की सलाह ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर अमरीकी हमलों को रोकने के फैसले को प्रभावित किया। रविवार को ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संवाद जारी है। यूक्रेन का कहना है कि उसने कैस्पियन सागर में उन जहाजों पर हमला किया है जिनका इस्तेमाल रूस और ईरान के बीच सैन्य सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि यूक्रेनी सेना ने मध्यवर्ती रूस के येकातेरिनबर्ग में एक लॉजिस्टिक सुविधा पर भी हमला किया। ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब यूक्रेन रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करने के लिए उसकी आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के प्रयास तेज कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हमले की यूक्रेनी कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। ईरान का कहना है कि उसने रूस यूक्रेन संघर्ष में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। तेहरान ने यूक्रेन की आलोचना करते हुए कहा कि कीव युद्ध को फैलाना चाहता है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने रविवार को कहा कि उन्होंने क्रीमिया में ऊर्जा और सैन्य संबंधी सुविधाओं को भी निशाना बनाया है। उनका दावा है कि इन स्थलों का इस्तेमाल रूस द्वारा ईंधन भरने और ड्रोन नियंत्रण के लिए किया जा रहा था। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में एकतरफा रूप से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। फ्रांस और स्पेन में दावानल के कारण 3 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा है। शनिवार को पूर्वी स्पेन में एक व्यक्ति मारा गया। यूरोप के विभिन्न हिस्सों में उच्च तापमान और शुष्क मौसम के कारण जंगलों की ये आग और भड़क गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि इस समय देश भर में लगभग 30 जगहों पर दावानल की घटनाएं जारी हैं। फ्रांस के अधिकारियों ने शनिवार रात 55,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश जारी किया, जिसके साथ ही देश में पलायन करने वाले लोगों की कुल संख्या कम से कम 2.5 लाख हो गई है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जिरोंड में बोर्डो के पास स्थित रिजॉर्ट क्षेत्र कप फेरे प्रायद्वीप के आसपास जंगलों की आग फैल रही है। फ्रांसीसी गृह मंत्री लॉरेन नुनेज ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि 42,000 हेक्टेयर भूमि जलकर भस्म हो गई है। उधर स्पेन में सरकार ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, जिसके बाद से राजधानी मैड्रिड के आसपास के क्षेत्रों में आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। निरंतर प्रयासों के बावजूद आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार मध्यवर्ती स्पेन में लगभग 70,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पूर्वी क्षेत्र वालेंसिया के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में दावानल की घटना में एक व्यक्ति मारा गया है। यूक्रेन में जन्मे सुमो पहलवान आओ निशिकी ने 3 तरफा प्लेऑफ मुकाबला जीतने के बाद जुलाई ग्रैंड टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर की तीसरी चैंपियनशिप जीत ली है। मध्यवर्ती जापान के नागोया में आयोजित 15 दिवसीय टूर्नामेंट के अंतिम दिन से एक दिन पहले तीसरी सर्वोच्च सेकीवा के श्रेणी के पहलवान आओ निशिकी 2 हार के साथ एकमात्र अग्रणी खिलाड़ी रहे। उनके साथी सेकीवा के खिलाड़ी अतामी फुजी और दूसरी सर्वोच्च ओजे की श्रेणी के पहलवान किरिशिमा 3-3 हार के साथ उनके पीछे चल रहे थे। रविवार को अंतिम दिन अतामी फुजी ने आओ निशिकी को बाहर खदेड़ा, जबकि किरिशिमा ने जोर से धकेलते हुए जीत हासिल की। इसके साथ ही इन 3 पहलवानों ने नियमित प्रतियोगिता की तरह 12 जीत और 3 हार के साथ यहाँ तक का सफर पूरा किया। इसके बाद तीनों के बीच प्लेऑफ मुकाबला होना था, जिसमें सबसे पहले लगातार 2 कुश्तियां जीतने वाले खिलाड़ी को खिताब से नवाजा जाना था। पहले टाई ब्रेकर मुकाबले में अतामी फुजी ने किरिशिमा को हराया, लेकिन फिर दूसरे टाई ब्रेकर में आओ निशिकी ने अतामी फुजी को और तीसरे में किरिशिमा को हराकर जनवरी टूर्नामेंट के बाद पहला एम्परर्स कप अपने नाम किया। पश्चिमी जापान स्थित ओइता प्रीफेक्चर के हिता शहर में एक पारंपरिक ग्रीष्मोत्सव के दौरान बारीक और रंग बिरंगी सजावट से सजी झांकियों के साथ जुलूस निकाला गया। हिता गियोन नामक इस उत्सव की शुरुआत 300 वर्ष से भी पहले बीमारियों और आपदाओं को दूर रखने के लिए हुई थी। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पंजीकृत है। शनिवार को हप्पी कोट पहने लोगों ने काबुकी और जोरूरी नामक पारंपरिक रंग कलाओं के दृश्य दर्शाती आकृतियों से सजी झांकियों को खींचा। मामेदा उवामाची क्षेत्र से आई एक झांकी के पिछले हिस्से को लगभग 3 मीटर लंबे और 1.3 मीटर चौड़े पर्दे से सजाया गया। इस पर्दे पर कढ़ाई की गई है, जिसमें सूर्योदय के समय सुनहरी कार्प मछली को झरने पर ऊपर चढ़ते देखा जा सकता है। इसे कथित रूप से 1840 में बने मूल पर्दे की तर्ज पर बनाया गया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK World Japan।